102.8 दशांश पर ल्यूटन तथा तेनी आजूबाजूना विस्तार माटे दर गुरुवारे रातना 8-10 कलाके अथवा फरी वक्त सांभरवा माटे लॉग ऑन करो www.diversefm.com पर। गीतमाला कार्यक्रम मा तमारा पोताना लाडीना मित्र कमल आचार्य साथे।